गुड मॉर्निंग सुपर सुपरवा छत्रपती संभाजी नगर. तुम्ही ऐकत आहात एमजीएम 90.8 एफएम आणि कसका एकदम मस्त मजेत आहात ना. ते तर असायलाच पाहिजे. आता काय नवीन महिना सुरू झालेला आहे म्हणजे आज आहे 1 जून. जून महिना कसा एकदम नवीन सुरुवात असतो क्योंकि मौसम बदलता आहे. इस महिने के अंदर अब आखिरी कुछ दिन है गर्मी की, फिर बारिश की मौसम, फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा. इसी के साथ आज है 1 जून और बहुतों का आज जन्मदिन भी होगा. सो जितने भी आज बर्थडे बॉय एंड गर्ल्स है ना, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे. आप सोच रहे होंगे कि अदनान ने ऐसा क्यों कहा कि बहुतों का आज जन्मदिन होगा, क्योंकि याद है आपको जून महीने के अंदर एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है स्कूल की, और जब स्कूल में हमें डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है तो अब हमें तो पता है, लेकिन हमारे मम्मी पापा के जमाने के टाइम पर ना तो बहुतों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं थी, तो इसी वजह से वो 1 जून ऐसा लिख लेते थे और तब से फिर वही रिवाज शुरू हुआ. और इस वजह से आज 1 जून के दिन बहुत लोगों का बहुत सारा बर्थडे है. सभी को जिन जिनका बर्थडे उनको तहे दिल से हैप्पी वाला बर्थडे. आज के शो में बहुत सारी बातें होगी, नया महीना है, नई शुरुआत है. सो गुड मॉर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड.

0: पैसों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: हम सबके लिए रात आराम का वक्त होती है, पर नाइट शिफ्ट वाले लोगों के लिए वही उनका ऑफिस टाइम होता है। ऐसा एक लड़का था अर्जुन, रात के 9 बजे घर से निकलता था। जब लोग फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते, तब वो अपना आईडी कार्ड गले में डालकर बस पकड़ रहा होता है। रात 2 बजे चाय की चुस्की और कंप्यूटर स्क्रीन, यही तो उसकी दुनिया थी। कभी दोस्त बोलते, यार तू हर वीकेंड गायब क्यों रहता है, वो हंसता था, पर सच ये था कि उसका वीकेंड औरों से थोड़ा अलग था। सबसे मुश्किल पल तब आता था जब सुबह 6 बजे शिफ्ट खत्म होती, शहर जाग रहा होता, लोग जॉगिंग कर रहे होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते और अर्जुन वो घर जाके सोने की तैयारी कर रहा होता। एक दिन घर लौटते वक्त उसने देखा एक छोटा सा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़कर स्कूल जा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, कितनी अजीब बात है ना, मैं पूरी रात काम करके घर जा रहा हूँ और ये अपना दिन शुरू कर रहे हैं। पर फिर उसके फोन पर मम्मी का मैसेज आया, बेटा अपना ख्याल रखना, तुम्हारी मेहनत पर हमें गर्व है। बस पूरी रात की थकान एक पल में हल्की हो गई, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाले लोग सिर्फ रात नहीं काट रहे होते, वो अपने सपनों के लिए नींद से समझौता कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपके घर में, दोस्तों में या आसपास कोई नाइट शिफ्ट करता हो, तो कभी उसे ये मत कहना तुम तो बस कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, या फिर ऐसा भी मत कहना कि यार नाइट शिफ्ट में क्या ही काम होता है, आधा काम करो आधी नींद ले लो। क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है ना भाई साहब, याद रखिएगा, तब कोई अपने घर के सपने जगाए रखता है। यही होते हैं ये नाइट शिफ्ट वाले लोग।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: आजकल एक लाइन ना तो बहुत कॉमन हो गई है, भाई डाइट करना है, एक काम करते कल से स्टार्ट कर दे। आप भी ऐसा ही करते हो ना, जानता हूं मैं यार। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। शुगर कम बोलने के बाद भी हम सीक्रेटली बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई में पूरे हिसाब से बराबर शुगर लेते हैं, और कहते हैं कि यार डाइट करना है लेकिन कल से करूंगा। आपने ये भी सुना होगा, बस ये पिज्जा लास्ट है, ये गुलाब जामुन आखिरी है, मंडे से पक्का डाइट, यार एक तारीख से तो पक्का डाइट करूंगा, और वो दिन कभी आता ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि डाइट स्टार्ट करने का प्लान हम इतनी बार बनाते हैं कि लगता है प्लानिंग ही सच्ची एक्सरसाइज है। कभी बर्थडे आ गया, कभी किसी का फंक्शन आ गया, कभी दोस्त ने ट्रीट दे दिया, इस वजह से डाइट हमारा रह जाता है, और फिर हम खुद कन्विंस करते हैं लाइफ तो एक ही बार मिलती है, कहाँ खाना कम कीजिएगा। वैसे बाय द वे दोस्तों, एक बात याद रखिए, डाइट का मतलब खाना कम करना ऐसा नहीं होता, डाइट का मतलब होता है खाना बैलेंस में खाना और प्रॉपर खाना। आप सिंपल कर सकते हो एक चीज, आज एक बिस्किट कम कर लिया, आज थोड़ा ज्यादा वॉक किया, आज कोल्ड ड्रिंक स्किप कर दी, आज शुगर थोड़ी कम खा ली, आज फूड फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड किया, इसके जरिए ना तो आप आपका डाइट स्टार्ट कर सकते हो। एक बात याद रखिए, डाइट कल से स्टार्ट, तो एक काम कीजिए, कल का वेट मत कीजिए, आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए, क्योंकि फिटनेस की जर्नी कल से नहीं अभी से शुरू होती है।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम के साथ हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैम, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए डेली स्ट्रेस मैनेज करने के सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स क्या है?
1: देखिए, पहली बात है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ कि पहले हमारे मेजर 3 टास्क जो है हमको वो प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले हमें वो खत्म करना है। हमें उन 3 चीजों पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब मान लीजिए कि 3 चीजें मेरी काफी इम्पोर्टेंट है जिनमें से एक चीज नहीं हुई है, तो वो क्या होता है कि मेंटली एक बर्डन फील होता है हमको, और उस बर्डन की वजह से दूसरी चीजों में भी मन नहीं लगता, दूसरे काम भी ठीक से नहीं होते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे मोबाइल में कोई एक ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला या ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाला ऐप अगर बैकग्राउंड में चल रहा हो तो हमारा मोबाइल का फंक्शन कैसे कम हो जाता है। सो सिमिलरली हमको वैसे मेजर रोज, दिस शुड बी अ डेली एक्सरसाइज कि ऑफिस में बैठ के पहले 3 प्रायोरिटाइज करें काम और वो पहले खत्म करें। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर 1.5 घंटे बाद अगर हम 5 मिनट का ब्रेक लें, कि जैसे एक ग्लास पानी पी लिया, 50 कदम हमने वॉक कर लिया ऑफिस में, है ना, विदाउट मोबाइल, तो थोड़ा 5 मिनट वॉकिंग और थोड़ा पानी पीना इज बेटर, तो वो हमको फिर से फ्रेश बना देता है एंड देन अगेन वी आर रेडी टू कॉन्सेंट्रेट फॉर से नेक्स्ट 90 मिनट्स। तो ये 2 चीजें तो मैं खुद भी काफी इम्प्लीमेंट करती हूँ और मेरा तो रिजल्ट काफी अच्छा मैंने महसूस किया है, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं।
0: सो आप अपना स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज करते हो तो ये टिप्स आप यूज कीजिएगा और फायदा तो आपको होगा ही। सो याद रखिए ये टिप्स, और भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और सुनते रहिए।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम एंड आज गाण्याची फरमाइश आलेली आहे सौरभ इंगळे यांच्याकडून या गाण्यासाठी
2: चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले
0: आज चल के तुझे बेहतरीन गाने की फरमाइश की है सौरभ जी ने तो उनकी फरमाइश पूरी करते हैं और गाने की खास बात यह है कि इस गाने को गाया भी था किशोर कुमार जी ने म्यूजिक किशोर कुमार जी का ही था और लिरिक्स भी ना तो किशोर कुमार जी ने ही लिखे थे चल इफ्रा भी गाना प्ले करते बाय द वे अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर और सुनते रहिएगा।

दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की बस एक इंसान इस जमाने में कर रहा है, वो है पेट्रोल और डीजल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और मैं चाहता हूँ कि मेरे जिंदगी में भी इतनी तरक्की हो जितनी तरक्की ना तो पेट्रोल और डीजल के दाम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर मिलता था और आज के वक्त में उसका रेट पहुंच चुका है 112 रुपए प्रति लीटर। और डीजल भाई ये भी कुछ पीछे नहीं है, 99 रुपए पर लीटर डीजल के प्राइस हो गए है, मतलब आसमान छू रहे और प्राइस ये। और यू नो वॉट, 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। बट मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चैनल के एक बड़े एंकर को कहते हुए सुना था कि 5 रुपए या 7 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है आम आदमी की जिंदगी में। बहन जी, आपके पास लाखों रुपए होंगे, आपके पेमेंट ज्यादा होगी तो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक आम आदमी को ना तो बहुत फर्क पड़ता है 1 रुपया भी बढ़ने से, क्योंकि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं ना तो बस महंगाई पेट्रोल की नहीं सभी चीजों की बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और जो मार्केट में सामान आता है, सब्जी आती है, वो सब महंगी होती है, सब कुछ महंगाई बढ़ती है। आप बस मस्त एसी वाले कैबिन में बैठकर कहते हो कि यार 5 रुपए या 7 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि फर्क पड़ता है और ये फर्क आपको और मुझे ना तो हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में अब महसूस भी होने लगा है। लेकिन करे तो करे क्या, कौन इस पर बोलेगा, क्या ही करेगा, बस चलता है, चलने तो बोल के चल ही रहा है। अब आई डोंट नो कि 112 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है, आने वाले वक्त में और ये कितना महंगा होगा ये मैं भी नहीं जानता। बस इतना ही हम कहेंगे कि आम आदमी की आप समझ जाइएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
4: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
5: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
4: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
5: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23

कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करता है उसे मोहब्बत नहीं मिलती। परेश पहुजा का यह गाना है जो कि अपने रिलीज के 3 से 4 साल के बाद हिट हो गया था। एक तरफा मोहब्बत क्या होती है और किस तरीके से होती है, यह गाना ये एक्सप्लेन करता है। और इस गाने में बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है।

0: प्यार में लालच ना गीता,
1: अगर प्यार में भी लालच रखोगे तो क्या खाक प्यार करोगे। और वो सोचता है कि जब वो उससे मिलेगा तो वो उसे देखकर क्या सोचेगी, ये सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो तो मिट्टी में पला पड़ा है और वो परियों सी है। एक बेचैनी और एक घबराहट होती है कि जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या बात करूंगा, वो थोड़ा डर लगा रहता है। और अपनी पसंदीदा औरत वो कुछ भी बोल दे वो तो शायरी सी लगती है। क्या है ना, दूरी और इंतजार, इन दोनों की कहानी है ये गाना।

आजकल हम सभी लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन सुनने के बाद हमें लगता है यार क्या ही लोग लेक्चर देते हैं ना। तो बात ये लेक्चर की नहीं है, बहुत गहरी बात है। कॉलेज स्टूडेंट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव, एक दिन उसे अनजान प्रोफाइल से मैसेज आता है, हाय आई सॉ योर प्रोफाइल और आप बहुत अच्छी हो। तो लड़की ने सोचा कि चलो थोड़ी बात कर लेती हूँ। कुछ दिन बात हुई, लड़की ने खुद को बड़े कंपनी का HR मैनेजर बताया, बोला कि वो उसे ना तो इंटर्नशिप दिलवा सकता है, बस उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो भेज दो। प्रिया ने भी फोटो भेज दिए, लेकिन कुछ दिन बाद उसी फोटो को एडिट करके वायरल कर दिया गया। प्रिया का भरोसा, कॉन्फिडेंस सब कुछ टूट गया। अब आप लोग ही सोचिएगा कि एक क्लिक में आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए साइबर सेफ्टी कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये आज की जरूरत है। तो किसी भी लिंक, किसी भी अनजान मैसेज, किसी भी ऑफर पर आग बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। आपकी ऑनलाइन जिंदगी आपकी असली पहचान है, उससे बचा कर रखिएगा। और अननोन इंसान से आप फ्रेंडशिप कर रहे हो ना, तो जरा सोच समझ के कीजिएगा। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच नहीं होता, याद रखिएगा। कोई आपको कह रहा हो कि बड़े कंपनी में HR हो, मैनेजर हो, ये हो, वो हो, तो क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले, क्योंकि एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ साइबर फ्रॉड हो रहा हो तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हो साइबर क्राइम में, नंबर है 1930। ये नंबर याद रखिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और सुनते रहिए।

90.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJ Adnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप जब मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।

0: तो दोस्तों अलविदा टाटा बाय बाय अपना ख्याल रखना. आरजे अदनान आपके साथ था इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमटीएम 90.8 एफएम. मेरा वक्त हो गया आपसे अलविदा लेने का. तो आपको आज का शो कैसा लगा बताइए जरूर डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर. बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा और जरा बाहर घूम रहे हो तो गाड़ी आराम से चलाइए, धीरे चलाइए क्योंकि जान है तो जहाने याद रखिएगा. बाकी तो प्यार बरकरार रखिए, सोशल मीडिया पर आइए और वहां पर मैं बेहतरीन से रील्स बनाता हूं तो उससे भी देखिएगा. पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना आए तो भी लाइक कीजिएगा. बस लाइक करते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए.
2: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, संभाजीनगर.

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: UGच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
1: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
2: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. व्हिजिट mgmu.ac.in, कॉल 9503082913.
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
5: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
6: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान.
5: ये है MGM 90.8 FM.

0: अब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM University इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।
5: चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट RJ और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM। साथ है तो बात है।

0: 96 को छत्रपति संभाजीनगर।
1: हर दिल की आवाज बने।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
3: ये दूरियां।
1: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
0: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
2: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
3: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
2: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
3: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। सोमवार के इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और ऑफ कोर्स आपके दिल की बात सुनने के लिए रेडी भी हूँ। अगले कुछ समय तक हम साथ बिताने वाले हैं संगीत, बातों और अच्छे एहसासों के साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। सोमवार अक्सर नई शुरुआत का दिन माना जाता है। सप्ताह की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। मीटिंग्स, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच शायद आपने अपने लिए ज्यादा समय नहीं निकाला होगा, तो थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए, आराम कीजिए और इस शाम का आनंद लीजिए। शाम का समय हमेशा खास होता है। दिन की थकान धीरे धीरे पीछे छूट जाती है और मन कुछ सुकून तलाशता है। ऐसे में अच्छा संगीत और कुछ प्यारी बातें आपके मूड को और भी बेहतर बना सकती है। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके मन पसंदीदा गानों का शानदार सिलसिला। अगर आप घर लौट रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या फिर अपने काम में व्यस्त हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये शाम आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। याद रखिए, हर एक नया हफ्ता आपके साथ नए अवसर लेकर आता है। अगर आज का दिन आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं गया तो चिंता मत कीजिए, पूरा हफ्ता बाकी है। अभी भी पॉजिटिव रहिए और बढ़िया सोचिए। सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आजकल कहते हैं ना, खुदी को कर मुकम्मल इतना कि खुदा भी तेरी रजा पूछे। इस पंक्ति में जिंदगी का बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान घमंडी बन जाए, बल्कि इतना सक्षम, मेहनती और भरोसेमंद बने कि उसकी पहचान उसके काम से हो। जब हम लगातार सीखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने सपनों के लिए ईमानदारी से कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हालात भी हमारा साथ देने लगते हैं। अक्सर हम अपनी सफलता या असफलता का कारण दूसरों में ढूंढते हैं, कभी किस्मत को दोष देते हैं, कभी परिस्थितियों को। लेकिन सच कहे तो सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही होती है। ज़रूरत है उसे पहचानने की, उस पर विश्वास करने की। हर बड़ा सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर आज आप अपने लक्ष्य से दूर हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए और छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता की कहानी बनाती है। याद रखिए, दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेती है जब आप खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखिए, अपने सपनों को इम्पोर्टेंस दीजिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए बेहतरीन सॉन्ग ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी सब कुछ हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता, तो कभी कुछ बातें मन के खिलाफ भी हो जाती है। लेकिन शायद जिंदगी का असली मजा भी उसी उतार चढ़ाव में होता है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 FM। हम अक्सर खुश रहने के लिए किसी खास मौके, बड़ी सफलता या किसी बड़ी खुशी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी तो हर दिन हमें छोटी छोटी खुशियाँ देती है। सुबह की ताजी हवा, अपनों की मुस्कान, दोस्तों की बातें और अपने सपनों के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास। कभी कभी हमें जिंदगी से शिकायत कम और इसका शुक्रिया अदा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वही किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। इसलिए आज खुद से कहिए, लव यू डियर जिंदगी, उन खूबसूरत पलों के लिए जो आपने दिए हैं और उन मुश्किल दिनों के लिए भी जिन्होंने हमें मजबूत बनाया है। अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा है तो यकीन मानिए, कल एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। और अगर आज का दिन शानदार रहा है तो उस खुशी को दिल खोल कर जी लीजिए। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है बल्कि एक सफर है, इसे हर पल महसूस कीजिए और छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहना एमजे 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़ाता, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सतत चिंता, अति विचार करणे, भीती वाटणे, धास्त बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसन रीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. The seats LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyaskram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: कभी आपने रात के आसमान को ध्यान से देखा है? हजारों तारों की भीड़ में भी कुछ तारे ऐसे होते हैं जो अलग ही चमकते हैं। शायद इसी एहसास को शब्द देते हैं ये खूबसूरत बोल, दिल सयारा ढूंढ रहा है। दिस इज आरजे मनीषा एंड ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 एफएम। सैयारा यानी एक ऐसा तारा जो सिर्फ चमकता ही नहीं बल्कि अपनी रोशनी से आसपास की दुनिया को भी उजाला देता है। एक ऐसा तारा जो भीड़ का हिस्सा होकर भी अपनी अलग पहचान रखता है। जिंदगी में हम सभी किसी ना किसी सैयारा के तलाश में रहते हैं। कभी वो एक दोस्त के रूप में मिलता है, कभी परिवार के किसी सदस्य में, और कभी किसी ऐसे इंसान में जो मुश्किल समय में हमारा हौसला बन जाता है। लेकिन एक बात और है, हम अक्सर किसी खास इंसान को ढूंढते रहते हैं जबकि शायद हमें खुद भी एक सैयारा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इंसान जो अपने अच्छे विचारों, अपने व्यवहार और अपने कर्मों से दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर देता है। एक तारा खुद जलता है तभी उजाला फैलाता है। उसी तरह संघर्ष, मेहनत और सकारात्मक सोच हमें ऐसा बनाती है कि हमारी मौजूदगी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो इस शाम अगर आपका दिल किसी सैयारा की तलाश में है तो याद रखिए, कहीं ना कहीं कोई रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है, और हो सकता है किसी की ज़िंदगी का सैयारा आप खुद ही हो। इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए सुनते हैं एक ऐसा गाना जो आपके दिल को सुकून दे दे। ओनली ऑन एमजे 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
3: Admission open, MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering,

नया हफ्ता हमारे सामने है और हर नया हफ्ता अपने साथ मौके लेकर आता है, नए नए और नई कोशिशें, नई चुनौतियाँ और बहुत कुछ नया। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजेम 90.8 एफएम। अक्सर हम चुनौतियों का नाम सुनते ही थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता भी यही चुनौतियों से ही गुजरता है। अगर सब कुछ आसान हो तो शायद हमें अपनी असली ताकत का एहसास नहीं हो सकता। नया हफ्ता एक खाली पन्ने की तरह होता है। पिछले हफ्ते क्या हुआ, क्या छूट गया, क्या हासिल नहीं हो पाया, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि हर सोमवार हमें एक नया मौका देता है कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने सपनों के थोड़ा करीब जाने का। हो सकता है इस हफ्ते आपके सामने कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नई जिम्मेदारी हो या कोई ऐसा काम जिसे लेकर आप थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, सकारात्मक सोचिए और हर चुनौती का स्वागत मुस्कुराकर कीजिए, क्योंकि चुनौतियाँ हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। तो इस हफ्ते की नई शुरुआत पूरे जोश, पूरे उत्साह और नई उम्मीद के साथ कीजिए और अपने लक्ष्य पर थोड़ा फोकस रखिए और हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव रहिए एंड ऑफ कोर्स अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए, क्योंकि ये मंडे आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। स्टे ट्यून्ड एमजेम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: बचपन से एक बात सुनी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 FM। और ये बिल्कुल सच है, लेकिन आज के समय में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है। अगर एक काम करने में दो रास्ते हो, एक लंबा और एक मुश्किल, दूसरा समझदारी से चुना गया आसान और प्रभावी रास्ता, तो आप क्या चुनेंगे? जाहिर है समझदारी वाला रास्ता। स्मार्ट वर्क का मतलब मेहनत से बचना नहीं है, इसका मतलब है अपनी एनर्जी, समय और क्षमता को सही इस्तेमाल करना, सही प्लानिंग्स करना, प्रायोरिटी को समझना, उस काम पर फोकस करना जो एक्चुअल में जरूरी है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, नई टेक्निक, नई तरीके और नए अवसर हर दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करते हैं, वही आगे भी बढ़ते हैं। अगर आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी मंजिल दूर लगती है, तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या आपको और मेहनत की जरूरत है? थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करिए। याद रखिए, सफलता सिर्फ इस बात से नहीं तय होती कि आपने कितने घंटे काम किया, सफलता इस बात से तय होती है कि उन घंटों में आपने कितना प्रभावी काम किया। तो इस नए हफ्ते में खुद से एक वादा कीजिए, मेहनत भी करेंगे और समझदारी से करेंगे, क्योंकि जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साथ चलते हैं तो सफलता दरवाजे को खटखटाती है। और आप सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधता है? इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्यूचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन AI and ML, MTech Data Science and Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, आंतर रुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
3: आपण इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जपानीज शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय?
4: तर मग एमजीएम युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
3: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जपानीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन, यासोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
4: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
3: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।
5: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

0: खुशी।
1: एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है और ये हफ्ता कैसा जाएगा इसका फैसला काफी हद तक हमारी प्लानिंग पर निर्भर करता है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 एफएम। अक्सर हम बिना किसी प्लानिंग के पूरे हफ्ते काम करते रहते हैं और फिर अचानक लगता है कि यार कितनी बिजी चल रही है लाइफ, लेकिन जो ज़रूरी काम थे वो तो पूरे हुए ही नहीं। वही यही वजह है कि अच्छी शुरुआत और सही प्लानिंग बहुत मायने रखती है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ मिनट निकालकर अपने लक्ष्य को दीजिए। सोचिए कि इस हफ्ते आपको कौन कौन से ज़रूरी काम पूरे करने हैं, कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जब हमारे पास क्लियर प्लान होता है तो काम आसान लगने लगते हैं, समय की बर्बादी कम होती है, तनाव भी कम होता है और परिणाम बेहतर दिखने लगता है। याद रखिए, सफल लोग सिर्फ ज़्यादा मेहनत नहीं करते बल्कि अपने समय को सही तरीके से मैनेज भी करते हैं। एक छोटी सी प्लानिंग आपको पूरे हफ्ते फोकस और मोटिवेट बनाए रखती है। तो इस नए हफ्ते में एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी प्रायोरिटीज को तय कीजिए और हर दिन को एक उद्देश्य के साथ शुरू कीजिए, जो कि आपको लाइफ में क्लैरिटी भी देगा ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: कभी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़ाता, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसन रीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. तसेच LLB नंतर करा LLM, Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्ष, तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

0: देखते देखते सोमवार की ये खूबसूरत शाम भी अब विदा लेने लगी है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 FM। दिन भर की भागदौड़, काम की व्यस्तता और नई शुरुआत के साथ बीता हुआ ये दिन अब धीरे धीरे रात की चादर में समेट रहा है। उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपने अपने किसी लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया है तो यकीन मानिए आपका सोमवार सफल रहा। और अगर कुछ काम आज पूरे नहीं हो पाए तो चिंता मत कीजिए, पूरा हफ्ता अभी बाकी है आने में। हर शाम हमें एक नया मौका देती है रुककर सोचने का, आज हमने क्या सीखा, क्या हासिल किया और कल और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए आज एक छोटी सी कोशिश जरूर कीजिए। सोमवार अक्सर नई शुरुआत का प्रतीक होता है और अब जब ये शाम अलविदा कह रही है तो अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिव एनर्जी छोड़कर जा रही है। तो दोस्तों, इस शाम को मुस्कान के साथ विदा कीजिए और आने वाले कल का स्वागत पूरे स्वैग से कीजिए। याद रखिए, हर नया दिन आपके साथ नए अवसर लेकर आएगा। इसी खूबसूरत सोच के साथ हम भी सोमवार की शाम को कहते हैं गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षण।
4: फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus in 6th Circle, Chhatrapati Sambhajinagar।

0: स्किल कभी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
2: MGM University, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सतत चिंता, अति विचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रजाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM, Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

0: अधनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: किसी ने मुझसे पूछा कि मैच्योरिटी कब आती है, मैंने कहा मैच्योरिटी आने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, कोई चाहिए से लेकर कोई भी नहीं चाहिए तक का, मगर ये सफर भी ना तो जिंदगी में बहुत जरूरी है और ये सफर करना भी चाहिए, क्योंकि इस सफर में कौन मिला कौन छूटा ये बात की बात है, पर खुद से मुलाकात हो जाती है ये कमाल की बात है। तो इस तरीके से अपने आप में एक मैच्योरिटी आ ही जाती है।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
2: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या यूजी आणि पीजी साठी ऍडमिशन मिळवा। बीटेक आणि एमटेक कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
3: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल, शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
4: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 एमजीएम युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको, व्हिजिट mgmu.ac.in, कॉल 9503082913।
5: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: तक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: हम सबके लिए रात आराम का वक्त होती है, पर नाइट शिफ्ट वाले लोगों के लिए वही उनका ऑफिस टाइम होता है। ऐसा एक लड़का था अर्जुन, रात के 9 बजे घर से निकलता था। जब लोग फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते, तब वो अपना आईडी कार्ड गले में डालकर बस पकड़ रहा होता है। रात 2 बजे चाय की चुस्की और कंप्यूटर स्क्रीन, यही तो उसकी दुनिया थी। कभी दोस्त बोलते, यार तू हर वीकेंड गायब क्यों रहता है, वो हंसता था, पर सच ये था कि उसका वीकेंड औरों से थोड़ा अलग था। सबसे मुश्किल पल तब आता था जब सुबह 6 बजे शिफ्ट खत्म होती, शहर जाग रहा होता, लोग जॉगिंग कर रहे होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते और अर्जुन वो घर जाके सोने की तैयारी कर रहा होता। एक दिन घर लौटते वक्त उसने देखा एक छोटा सा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़कर स्कूल जा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, कितनी अजीब बात है ना, मैं पूरी रात काम करके घर जा रहा हूँ और ये अपना दिन शुरू कर रहे हैं। पर फिर उसके फोन पर मम्मी का मैसेज आया, बेटा अपना ख्याल रखना, तुम्हारी मेहनत पर हमें गर्व है। बस पूरी रात की थकान एक पल में हल्की हो गई, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाले लोग सिर्फ रात नहीं काट रहे होते, वो अपने सपनों के लिए नींद से समझौता कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में, दोस्तों में या आसपास कोई नाइट शिफ्ट करता हो, तो कभी उसे ये मत कहना, तुम तो बस कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, या फिर ऐसा भी मत कहना यार नाइट शिफ्ट में क्या ही काम होता है, आधा काम करो आधी नींद ले लो। क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है ना भाई साहब, याद रखिएगा, तब कोई अपने घर के सपने जगाए रखता है। यही होते हैं ये नाइट शिफ्ट वाले लोग।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध। आजच भेट द्या
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: पर।
1: यही है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, इसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।